0: अच्छा चावाय
1: जान सागना खर्ची यू
0: ना मैं कल चिंबी अच्छा ना मैं कहने ट्यूम्बरे सा चेसन दे यों भी दिने थोरो चेन समझ न्यू बत के कुंजल दे रिस्सू संगुशे कौन सा सीन सुना ना चुची यू
1: मुने चेन न्यासन बा सागन जो या फंग फंग पुतु जी समझे कले खर्ची यू ने रुको सम दे यू इने ने नोशा
0: अच्छा चावाय मैं युद्ध चेचो माशे
1: Baimi, rangan tu nyumdo yu rinwa di jesibri. Tamade ka yes daya chumusu. Sing masa a. Ay pinga, tsongi che toya mido. Di jesi, nizan nirang le lopzi gila zi jesho. Di rang kasa sheba zi sho.
0: Acha xiaoai, nga zemdi re ma chani yongdui a. Tengu nga lopzi nilmo zi gudu, acha ranga nga nyache. Lakze lopzi. Suyin hangi chobu yak shuyin. Mandu gong la acha ranga tato shiros nga shi ranga gi. Ine tante tinte cha zang.
2: 我所以好了,自己就是这样。
3: 부딩